0: lollipop.
1: कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा गाड़ी किसी किसी की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया।
2: She's right, Inspector. She's right. सुनिए, आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन।